नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप ही भी अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आज की सभा में प्रसारित हुए बाय कार्यक्रम की रूपरेखा खो। तो रूपरेखा खो जानने से पहले आओ जान लेते हैं आज को दिन तारीख बा समय खो। तो आज दिन है मंगलवार को और तारीख है 19 मई 2026। इबेर अपने स्टूडियो की घड़ी में समय भाव है 7:01। सो दोस्तों, जो अपने दिन तारीख समय के जानो है एक क्रम में जानते हैं प्रसारित हुए बाय कार्यक्रम की संक्षिप्त सी रूपरेखा। सबसे पहले कार्यक्रम सुने अपन भोर कार्यक्रम में सुने भक्ति भरे गीतन खई के बाद सुने पुनः प्रसारण कार्यक्रम। शुभ कल हम होंगे कामयाब, कार्यक्रम हमारा गाँव हमारी सरकार, खेत खलिहान विधा बुंदेली। दोस्तों, जो कार्यक्रम पूर्व प्रसाद कार्यक्रम है, जो कार्यक्रम अपन 8 बजे से 10:30 बजे तक सुने हैं, 10:30 बजे से 11 बजे तक सुने, आज के बाद 11 बजे से 12 बजे तक सुने, बात तो वहीं 12 बजे से 1 बजे तक सुने लोकरण कार्यक्रम, 1 बजे से 3 बजे तक सुने सतरंगी रे कार्यक्रम, 3 बजे से 3:30 बजे तक सुने बुंदेली गीत, बुंदेली गीतन को आनंद ले। 3:30 बजे से सुने शुभकल कार्यक्रम, 4 बजे तक, 4 बजे से सुने हम होंगे कामयाब कार्यक्रम, 4:30 बजे तक, 4:30 बजे से सुने अम्मा के चौकी से 5 बजे तक, 5 बजे से सुने खेत खलिहान कार्यक्रम 5:30 बजे तक, 5:30 बजे से सुने अपने विधा बुंदेली कार्यक्रम 6 बजे तक। दोस्तों, जी आज की सभा में प्रसारित हुए वाय कार्यक्रम की रूपरेखा थी। आओ शुरू बात करते हैं कार्यक्रम भोर से। भोर कार्यक्रम में सुने थे भक्ति भरे गीतन खुश, आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में।

हो सागर से पार उतारे, जब जो जावे इनके द्वारे, पापी से पापी भी तारे, भव सागर से पार उतारे, तो इन खोनी चट अरे हाँ।

सो फसम फसो माया में जो चक्कर फिरा के रे केसो फसल फसो माया में जो चक्कर फिरा के रे भजन ना पायो।

0: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में। और आपके साथ है आपकी रेडियो दोस्त वर्षा
1: और मनीष कार्यक्रम लेकर आए हैं। और साथ में आपको बता दें कि कार्यक्रम आजीविका में हम छोटे छोटे व्यवसाय को लेकर बातचीत करते हैं। और ऐसा हमारे श्रोता साथी सोचते हैं कि छोटे छोटे व्यवसाय तो बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन कहीं क्योंकि कृषि प्रधान देश है अपना और बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा खेती होती है, तो ऐसे में हमारे बेरोजगार युवा साथी किस तरीके से रोजगार को बढ़ा सकते हैं खेती में।
0: बिल्कुल सही कहा है आपने मनीष जी, क्योंकि हमारे जब साथी किसानी तो करते ही हैं, लेकिन किसानी में किस तरह से वो एक व्यवसाय के तरीके से देख सकते हैं, बहुत ही छोटे छोटे से लघु उद्योग जिनको कहते हैं, वो अगर करके एक बहुत ही अच्छा बेहतर तरीका अपना सकते हैं। जो हमारी बहनें हैं जो हमेशा सोचती हैं कि हम फालतू रहते हैं घर में खेती का काम करके, या घर का काम करने के बाद भी हमारे पास बहुत सारा समय ऐसा बचता है जो हमारा बेकार का जाता है, तो ऐसे समय को हम लोग किस तरह से इस्तेमाल करके एक नया तरीका अपना सकते हैं व्यवसाय को देखते हुए, लघु उद्योग को देखते हुए, और किस तरह से हम अपनी आजीविका चला सकते हैं, आज के इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे।
1: उन्होंने बताया था कि किस तरीके से हमारा किसान आज किसानी करते हुए बहुत वर्ष हो गए हैं, लेकिन वो मुनाफे का खेती नहीं कर पा रहा है, कि क्यों नहीं कर पा रहा है, इसकी जानकारी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से दी थी कि किस तरीके से वो मुनाफे की खेती कर सकता है। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम नए नए आइडियाज खेती से हम दाल उगाते हैं, खेती से चना होते हैं, खेती से चावल होते हैं, बहुत सारे ऐसे खेती के प्रोडक्ट होते हैं, बहुत सारे ऐसे खेती के सामान होते हैं जिनको हम बाजार में बहुत अच्छी तरीके से बेचकर बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा है आपने, क्योंकि हमारे जब किसान साथी फसल उगाते हैं तो वो सीधा ले जाकर उसको बेच देते हैं, लेकिन उसका जो पूरा मुनाफा होता है वो बीच के बिचौलिया ले जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि इस कार्यक्रम को आप बड़े ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस कार्यक्रम में वो सारी जानकारी आपको बताई जा रही है कि किस तरह से खेती से आप सीधा मुनाफा जो बिचौलिया ले जाते हैं वो उनको ना जाके आपको सीधा ही मिल सकता है।
1: बिल्कुल। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे हमारे

0: डॉक्टर संतोष पांडे जो कृषि विभाग में पदस्थ हैं, उनसे हमने जानने की कोशिश की और उनसे जाना भी है कि हमारे किसान साथी इस बुंदेलखंड क्षेत्र में इस खेती में किस तरीके से मुनाफे का सौदा कर सकते हैं, किस तरीके से वो अपने खुद के उगाए हुए फसलों को किस तरीके से व्यवसाय तरीके से बेच सकते हैं। क्योंकि खेती करने वाला किसान होता है वो सिर्फ अनाज को उगाता है, उगाने के बाद वो मंडी में सीधा ले जाता है, लेकिन यदि व्यावसायिक तरीके से देखा जाए तो व्यावसायिक तरीके से यदि खेती की जाए, उसने जैसे कोई भी खेती को उगाया उसने और घर पर रख के वो अब उसको पैकिंग करके अगर मार्केट में बेचेंगे तो बहुत ज्यादा मुनाफा होगा और बहुत ज्यादा, चूंकि हम जब खड़े चना ले जाते हैं या खड़ी दाल ले जाते हैं या खड़े चावल ले जाते हैं तो वो कम रेट में मिलते हैं, लेकिन यदि हम उसको बढ़िया पैकिंग करके बढ़िया दाल बनाकर उसकी पैकिंग बाजार में अपने ही ब्रांड, क्योंकि इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं लगता है, और अपनी ब्रांड से बेचकर इसको बाजार में बेचा जाए तो बहुत ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं हमारे किसान साथी, हमारे युवा साथी इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं।
1: तो सारी जानकारी आप यहीं बता देंगे या फिर हमारे साथियों को प्रोग्राम भी सुनने देंगे?
0: चलिए, हम अपने डॉक्टर संतोष पांडे से मुलाकात आपको करवा रहे हैं जो कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में पदस्थ हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथी किस तरीके से व्यावसायिक तरीके से खेती को कर अपना मुनाफा कमा सकते हैं। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर संतोष पांडे जी को।
2: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संतोष पांडे है। मैं सहायक प्राध्यापक के पद पर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में नियुक्त हूँ। बुंदेलखंड के शायद युवा जो हैं वो फर्स्ट क्लास जो है, यहाँ पर चूंकि दलहन उत्पादन बहुत होता है
3: जी,
2: इसके लिए उनको जो है दलहन में जैसे चना है, मटर है, मसूर है, इसको दालों के रूप में उद्योग को विकसित कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, बाई प्रोडक्ट्स में जैसे दाल तो है ही है, दाल के साथ साथ नमकीन है और सारी जो है चीजें, तमाम जो है इसके प्रोडक्ट जो है तैयार हो सकते हैं, इसको करके अपनी आजीविका को बढ़ा सकते हैं। दलहन आज के समय में मुख्य जो है आवश्यकता है और बुंदेलखंड रीजन
3: जी,
2: जो ये झांसी ललितपुर आपका जालौन ये एरिया है, ये खासकर मटर
3: जी,
2: चना
3: जी,
2: उर्द मूंग इसके लिए बहुत अच्छा है। जिसके साथ साथ यहाँ पर वर्तमान समय में जो आज का परिवेश है इसमें तिलहन के रूप में तिल की खेती करके तिल से बहुत सारे बाई प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, जैसे तिल का लड्डू है
3: जी,
2: आज के समय में तिल की मिठाइयां हैं
3: जी,
2: तिल का तेल है
3: जी,
2: ये उद्योग जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में अगर युवा साथी अपनाएं और गांव में एक समूह बनाकर छोटे छोटे जो है ग्रुप्स में जो है अगर काम करना शुरू करें तो बहुत अच्छा इनकम जो है इससे जो है डेवलप किया जा सकता है। ये ग्रुप्स 10 का हो सकता है, अपने हम उम्र में हो सकता है, एक उम्र के वर्ग के साथी जो है साथ में जुटे, जो क्योंकि युवाओं में जोश होता है, क्योंकि एक उम्र में एक जाति एक विशेष वर्ग में, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि क्या है विचार मिलने की बात है
3: जी, जी।
2: युवा तभी जो है उसमें मोटिवेट होगा जब हमारे विचार मिलेंगे।
3: बिल्कुल सर,
2: तो इसलिए उन विचार एक विचार वाले साथियों को मिलकर उस पर एक चर्चा करनी चाहिए
3: जी।
2: इसके साथ साथ दुग्ध पालन है
3: जी।
2: उसके बाद दलहन तिलहन तो है ही है
3: जी।
2: तमाम साधन कृषि में अनेक संभावनाएं हैं जिसमें रोजगार ही रोजगार है, सिर्फ और सिर्फ उसमें ध्यान देने की जरूरत है और संगठन के साथ कार्य करने की जरूरत है
3: जी। और दूसरी बात सर आती है कि यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात आती है, तो हमारे युवा साथी इसको किस तरीके से देख सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, क्या बुंदेलखंड में संभावना है सर?
2: इसे स्वरोजगार, जैसे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है
3: जी,
2: कि हमारे यहाँ स्वरोजगार, लोग नौकरी ना करके स्व स्वावलंबन में आए
3: जी,
2: उस तहत में काम कर सकते हैं
3: जी।
2: उसके लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट में जैसे है कि हम जो बाई प्रोडक्ट्स हैं सारी चीजें प्रोसेसिंग में ही आती है
3: सर,
2: तो उसका हम उपयोग गांव में तमाम चीजें होती हैं
3: जी,
2: जैसे बेसन है
3: जी,
2: दलिया है
3: जी,
2: यहाँ बुंदेलखंड का कठिया गेहूं बहुत अच्छा है।
3: बिल्कुल सर,
2: तो किसान जो है के घर के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं बेरोजगार के लिए इधर उधर टहल रहे हैं रोजगार के लिए
3: जी,
2: छोटी छोटी मशीनें गवर्नमेंट से जो द्वारा जो है 10-12 हजार 15 हजार रुपए में छोटी छोटी मशीनें आती, उसको ले ले और स्वयं से पैकिंग

0: करें, उसका अपना जो है सोसाइटी बना लें, एफआईजी या पीओ का डेवलपमेंट करें, फार्मर एफआईजी या फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप, फार्मर ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप या पीओ होता है
1: जी,
0: तो उसके आधार पर काम कर लें और जैसे जैसे काम बढ़ता जाए लोग उसमें जुड़ते जाए और ये एक बहुत बड़ा रोजगार जो है दे सकता है।
2: बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने सर बात करी। और चूंकि बुंदेलखंड में इस तरीके की हमारे युवा साथी सोचते हैं कि एग्रीकल्चर को व्यवसाय के रूप में नहीं देखते, यहाँ पर क्या होता है कि जो उद्योग की अगर बात करें, फ्लाई ऐश मशीन लगाना या फिर पेवर्स ब्लॉकिंग करना, इस तरीके के व्यवसाय को वो व्यवसाय कहते हैं। लेकिन यदि एग्रीकल्चर को देखा जाए, कृषि को देखा जाए, उस तरीके को फायदे का, मुनाफा का सौदा नहीं मानते हैं। इसके बारे में सर आपका क्या कहना है? सर,
0: कृषि के क्षेत्र में विकास कार्य बुंदेलखंड में बहुत कम हुआ है, जो काम किया भी जा रहा है वो रूट लेवल पर नहीं है, जमीनी स्तर पर नहीं है
1: जी।
0: ये कार्य जमीनी स्तर पर होना चाहिए, गाँव में लोगों को इसके लिए गवर्नमेंट से मेरी ये गुजारिश है कि जमीनी स्तर पर प्रोग्राम चलाए जाएं, जिसको कि गाँव में डोर टू डोर सिस्टम में कहा जा सकता है, युवा साथियों को स्वरोजगार के माध्यम से इन सब चीजों की जानकारी दी जाए
1: जी।
0: और जो चीजें हैं आज के युग में, जितने भी हमारे जो भी बाहरी लोग नौकरी करने जाते हैं
1: जी,
0: उसमें चीजें हैं, हमारे यहाँ महिलाएं, गांव की महिलाएं रोजगार की तलाश करती है, लेकिन रोजगार उनको दिखता नहीं, जो कि रोजगार उनकी घर में है। अगर चावल की बिनाई कर ले, पाइप बिनाई करके उसको पैकेटिंग कर ले
1: जी,
0: दाल जो है चना है, चने की ग्रेडिंग कर ले
1: जी,
0: ग्रेडिंग करके पहली क्वालिटी का चना मार्केट में खड़ा चना के रूप में यूज करे, सेकेंड क्वालिटी का चना दाल के रूप में, थर्ड क्वालिटी का चना बेसन के रूप में, इस तरह बाई प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। बाई प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करने के लिए जो बेरोजगार युवक युवतियां हैं
1: जी,
0: उनको मार्केट में जो है आगे आना चाहिए। जो दलाल है, ब्रोकर्स है, जिससे किसानों की जो दयनीय स्थिति गड़बड़ हो रही है
1: जी,
0: वो भी इम्प्रूवमेंट होगा, वो भी सुधार होगा
1: जी।
0: और एग्रीकल्चर से ज्यादा रोजगार किसी चीज में नहीं है आज के समय में, एग्रीकल्चर इज द बेस्ट, सबसे अच्छा है
1: जी।
0: तो रोजगार के लिए हमें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जानकारी की जरूरत है और हमें आके खोलने की जरूरत है
1: जी।
0: जहां चाह वहां राह की बात बिल्कुल चरितार्थ होती है। तो अगर हमारे युवा साथी बुंदेलखंड की समस्या, अगर लोग, चूंकि 60% 70% आबादी हमारी खेती पर ही निर्भर है और हम दलालों के माध्यम चूंकि काम करते नहीं, ज्ञान नहीं है,
1: बिल्कुल सर,
0: उसके नाते हमें बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है।
2: बिल्कुल सही बात कही आपने। और चूंकि अगर सर बात करें इसकी खेती किसानी की और जो प्रोडक्ट आपने बताए हैं, लेकिन समस्या सर आती है उनको मार्केट में किस तरीके से बेचा जा सकता है, इसके बारे में साथियों को कुछ अनुभव आप शेयर करें जरूर बताएं।
0: कोई चीज बिकती कब है? जब क्वालिटी होती है। क्वालिटी गुणवत्ता के लिए मैंने क्या कहा कि ज्ञान की जरूरत है, थोड़ा सा हम ट्रेनिंग है, अगर ट्रेनिंग और प्रोसेसिंग का काम हम सीख लें
1: जी,
0: तो बहुत अच्छे तरीके से हम मार्केटिंग का भी काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो चीजें दिखती हैं वही बिकती हैं।
1: बिल्कुल सर।
0: तो आपको अपने ब्रांड की ब्रांडिंग करनी, अपने जो प्रोडक्ट हैं उनकी ब्रांडिंग का कार्य करना होगा।
1: बिल्कुल सर।
0: जब तक आप उसको ब्रांडिंग नहीं करोगे, कोई चीज मार्केट में नहीं ले आओगे, तब तक उसकी वैल्यू नहीं बनती।
1: बिल्कुल सर।
0: बुंदेलखंड में बहुत सारी जो है ऐसी चीजें हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, जो आज भी नेचुरल रूप में ऑर्गेनिक फार्मिंग का यहाँ सबसे बड़ा रिच स्रोत है।
1: बिल्कुल।
0: यहाँ जो है जैविक खेती की बात जो सरकार कर रही है उसको भी बढ़ावा दिया जा सकता है
1: जी।
0: यहाँ मार्केटिंग के रूप में उसको जो है लेने के लिए दिल्ली जो है सबसे नियरेस्ट मंडी है।
1: बिल्कुल सर।
0: दिल्ली है, भोपाल है, ग्वालियर है, एमपी के सटे हुए होने के नाते इसके पास व्यवसाय के बहुत सारे रास्ते हैं
1: जी।
0: अगर किया जाए इसके साथ साथ औषधीय पौधों की खेती भी की जा सकती है।
1: बहुत बढ़िया सर जी। बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो कार्य करने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, सिर्फ हमको ट्रेनिंग और जानकारी की जरूरत है
1: जी।
0: अगर हमारे किसान भाइयों को ट्रेनिंग दी जाए, उसके लिए हम लोग उपलब्ध हैं
1: जी।
0: जो इच्छुक हों लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं
1: जी।
0: वो हमसे सीधे संपर्क करें, हम उनको ट्रेनिंग दे बताएंगे और जगह जगह संस्थाएं
1: जी
0: उसके बारे में जानकारी देंगे। गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं स्वरोजगार से संबंधित
1: जी,
0: उसके लिए किसान भाइयों को आगे आना पड़ेगा और कार्य करना पड़ेगा।
2: बिल्कुल सही बात। बिल्कुल, बहुत अच्छी सर आपने बातचीत बताई है। और हमारे युवा साथियों को चलते और क्या आप बताना चाहेंगे कि इस, चूंकि दूसरी चीज सर आती है प्रशिक्षण की बात आती है, प्रशिक्षण में चूंकि अनुभव की कमी आती है कि किस तरीके से वो कार्य करें, और कुछ भी व्यवसाय करते हैं तो अनुभव रहता है, दूसरा मार्केट रहता है, तो अनुभव की कमी आती है, तो उसमें आपके क्या विचार है सर, किस क्या करना है
0: उसके लिए?

0: को निकालिए और आप छोटे से व्यवसाय को करेंगे, 1000, 2000, 4000 रुपए की पूंजी से जो काम अपना करेंगे, धीरे धीरे पैसे बढ़ते जाएंगे और आप आत्मनिर्भर होते जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास नौकरियां नहीं, नौकरी आपको डेवलप करनी है, इसलिए काम आपको करने होंगे। चीजें हमने आपको बताई कि रोजगार एग्रीकल्चर में भी बहुत ज्यादा है, कोई कमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसको आपको ज्ञान होने की जरूरत है और उसके लिए प्रशिक्षण केंद्र खुले हुए हैं। गवर्नमेंट से स्वरोजगार योजना चलती है, उसके माध्यम से आप प्रशिक्षित हो सकते हैं, कृषि से संबंधित रोजगार कर सकते हैं और कृषि के अलावा भी आप काम करना चाहें तो गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं जिसमें आप काम कर सकते हो।
1: जी बहुत बहुत सर धन्यवाद,
2: बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में। और साथियों, अभी आपने संतोष पांडे जी को सुना और उनसे बहुत अच्छी जानकारी ली कि किस तरीके से खेती को हम व्यावसायिक तरीके से करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
3: बहुत सही कहा है आपने, और साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि हमारे किसान साथी और ज्यादा मुनाफा खेती से कैसे कमा सकते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि चावलों को एक बीन के अच्छे से तैयार करके, एक पैकिंग करके मार्केट में अगर आप इसको उतारेंगे तो आप बहुत अच्छी इसकी बिक्री भी होगी, साथ ही साथ आपका मुनाफा भी अच्छा होगा इससे।
2: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि किसान तो खेती करके वो अपना माल को बेच देता है, लेकिन जो व्यापारी रहते हैं वो उस माल को दुगने रेट में, जब बाजार में बढ़िया तरीके से उसको साफ करा के बेचते हैं तो दुगने रेट में बेचते हैं। तो क्यों ना हमारे किसान साथी इस तरीके का व्यावसायिक तरीके से खेती को करें, अपना अनाज स्वयं मार्केट में बेचे, अपने ब्रांड बनाए और छोटे छोटे समूह बनाकर, क्योंकि हमने एक कार्यक्रम में बताया था कि हथकरघा विभाग यानी हाथ से बनी हुई चीजों पर सरकार लोन उपलब्ध कराती है, यानी पैसा उपलब्ध कराती है, तो आप ज्यादा पूंजी लगना नहीं है इसमें, छोटी छोटी पूंजी लगना है और मार्केट में इसको बेचकर बहुत अच्छा मुनाफा हमारे साथ ही कमा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी योजना के साथ यदि देखा जाए तो किसान साथियों के लिए भी बहुत सारी योजना चल रही हैं। यदि अपना व्यवसाय खुद का करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और आगे इसको बढ़ा सकते हैं।
3: हालांकि साथियों को कुछ पता भी रहता है, किसान साथियों को, कि किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ रह जाते हैं वहां पे कि हमें ट्रेनिंग कहां से मिलेगी, क्योंकि सही तरीके से काम कैसे किया जाए जब तक हमें कोई प्रशिक्षण नहीं मिलेगा हम लोग नहीं सीख सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने पता भी बताया है कि अगर आप किसान साथी इस तरह का कोई प्रशिक्षण अगर चाहते हैं तो उनसे संपर्क करके आप एक बेहतर प्रशिक्षण ले सकते हैं और आगे चल के अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
2: तो साथियों, अब हमारा समय होता है इस कार्यक्रम आजीविका से जाने का। आजीविका में बेहतर और क्या कर सकते हैं, आपके सुझाव और आपके मार्गदर्शन की जरूरत होगी कि किस तरीके से हम एक नए तरीके से व्यवसाय कर आगे बढ़ सकते हैं। तो जरूर अपने सुझाव हमारे इस पते पर, चूंकि हमारे बहुत सारे श्रोता साथी ऐसे हैं जो फोन करने में हिचकिचाते हैं और मैसेज भी करते हैं लेकिन उनको चिट्ठी लिखने में बहुत मजा आता है, तो चिट्ठी के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है
3: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तिगेला के पास ओरछा।
2: और फोन करके भी आप अपने सुझाव दे सकते हैं, फोन नंबर है हमारा
4: 9219207049।
3: साथियों, आप इस पे अपने सुझाव भी रिकॉर्ड करा सकते हैं, साथ ही साथ आप मैसेज भी इस नंबर पर कर सकते हैं और मैसेज के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि आजीविका कार्यक्रम में और क्या नया बेहतर कर सकते हैं जिससे आपको थोड़ी सी और जानकारी ज्यादा आपको मिल सके, या फिर कोई ऐसा आइडिया जो हमारे किसान साथियों के लिए या फिर हमारे युवा साथियों के लिए बहुत बेहतर साबित होगा। तो आपके मैसेज और पत्रों का रहेगा हमें इंतजार। अब दीजिए अपनी रेडियो दोस्त वर्षा
2: और मनीष को जाने की इजाजत। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम आजीविका में मुलाकात, तब तक के लिए
3: नमस्कार।
2: और चलते आप सुनिए एक प्यारा सा गीत जिसे गा रहे हैं हर प्रसाद कुशवाहा और उनके साथी।

नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपके अपने रेडियो दोस्त वर्षा के दो हाथ जोड़ के नमस्कार पहुंच जावे। और साथियों देखो, आपको तो पता ही हैगो कि आज के दिन और इस समय पे आपके बीच में कौन सा कार्यक्रम आवे वालो हैगो, तो हम लेके हाजिर हो गए हैंगे आपको अपनो मन पसंद कार्यक्रम स्त्री एक कहानी मेरी भी। इस कार्यक्रम में अपने सब साथी जानत भी हैंगे कि अपन और एक महिला से बात करत हैंगे और उसे पूरे जीवन की गाथा को सुनत हैंगे कि उनको कैसो सफर रहो है वो पूरे एक जीवन को। उनने पढ़ाई कितने तक करी हैगी और साथ में उनकी शादी कब भई थी, और साथ में जाने के भी जब शादी उनकी भई थी तो भी शादी के बारे में जाना था कि नहीं। देखो, जिस शादी उनकी हो रही थी उनको उनने देखो भी हतो या नहीं देखो, तो कहे आज के समय की अगर अपन और बात करें तो आज तो देख भी तो बाद में जात, पहले मोबाइल नंबर पहले पहुंच जाता ही, और मोबाइल नंबर जब पहुंच जाती तो बातें भी खूब दम से होती, और फिर देख भी की तो बातें ये अलग हैगी कि देख तो एक दो बार लेते ही हैंगे। लेकिन पहले के समय में अपन और देखो कि जितनी भी कहानी अपन और अन्य स्त्री में सुनी हैगी उनने कोनों ने भी जानी गई कि हमने देखो हतों ने जिनसे हमारी शादी हो रही थी, बस परिवार वाले देखिया या कोई जैसे कि जो मानदान रहतेंगे ब्योरे देख आते ही, तो लड़की को देखने की कोनो जरूरत नहीं पड़त हैगी। तो आज की इस कहानी में अपन और बात करेंगे लक्ष्मी जी से, जो कि राधापुर की रहने वाली हैंगी, और राधापुर की लक्ष्मी जी अपन को बता रही हैंगी कि की तरह से उनको जीवन रहो हैगो, और साथ में भी बता रही हैंगी कि 20 साल से वे आंगनबाड़ी में नौकरी कर रही हैंगी, तो उनके जीवन के का अनुभव उनको रहे हैंगी और पढ़ाई को लेकर भी कितनी सोचती हैंगी, ये सब बातें अपन और आज की कार्यक्रम स्त्री में करेंगे। तो चलो साथियों, देर नहीं करा थेंगे, हम आपको सीधो ले चला थेंगे राधापुर, जिते अपन लक्ष्मी जी की कहानी उन्हें की जुबानी सुन रहेंगे। तो आओ चला थेंगे राधापुर।

0: राम राम अम्मा।
1: राम राम।
0: क्या नाम है अम्मा आपको?
1: लक्ष्मी नाम मेरा।
0: अच्छा, कहाँ रहती हैं आप?
1: राधापुर।
0: राधापुर में रहती
1: हैं।
0: क्या करती हैं अम्मा?
1: आंगनवाड़ी में काम कर रही
0: हैं। आंगनवाड़ी में होंगी आप? कितने साल से कर रही?
1: हम कर रहे 20 साल से।
0: 20 साल से?
1: हाँ, 20 साल से।
0: अच्छा, तो अम्मा आज हम आपसे आपके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। तो जैसे शुरुआत की बात करें, आपको मायको कितने हैं?
1: हम हमारे को झांसी में।
0: झांसी में कौन जगह?
1: झांसी जो है गोगन चौराहे डाल के नीचे, राज डॉक्टर आपने सुना उनको?
0: हाँ, हाँ,
1: उन्हीं के नीचे रहते थे।
0: अच्छा, उन्हीं हाँ, के नीचे रहते थे। आपके परिवार में खोखो हो तो?
1: हमारे परिवार में हमारे भैया थे, भाभी थी, दोनों थे, तीन बहने थे।
0: अच्छा, तो और मम्मी पापा?
1: मम्मी पापा थे।
0: अच्छा, आपके घर का क्या काम हो तो?
1: वहाँ पे वहाँ पे तो चौका वाचन करते सबके, तो ज्यादा जमीन नहीं होती, मजदूरी करते और बड़े बड़े लोगों को काम करे आते।
0: अच्छा,
1: मेरे पिताजी गुजर गए थे, हम लोग सब छोटे थे, मैं अम्मा के लिए क्या करती।
0: हाँ, सही बात।
1: तो अम्मा ने सबको लगा दो, तो कोई को 10 रुपया महीना से, कोई को 5, जब समय छोटे।
0: अच्छा, 10 रुपया?
1: हाँ, 10 रुपया से। हमारे भैया को 15 रुपया मिलते हैं, 10 बच्चा खिलाते उनके।
0: अच्छा,
1: खाना देती है और कपड़ा मपड़ा देती, 10-5 रुपये 10 रुपये दे देती है।
0: तो मतलब इस तरफ से, इस तरह से चलत रहती
1: है।
0: अच्छा, अगर आप आपके बचपन की बात करें तो बचपन में और काका काम आपने, पढ़ाई कितने तक करी है आपने?
1: हमने पढ़ाई 5 तक करी।
0: 5 तक पढ़ाई करी है। अम्मा आपकी उम्र कितनी हुई है?
1: हमारी उम्र 2 साल कम रह गई, 60 साल।
0: 60 साल में 2 साल कम रह गई आपकी। तो आपने बचपन में काम, तो जैसे आपने बताया कि काम भी करी, लेकिन फिर से और छोटे जो बचपन होते ही, जब मान लो अपन काम करने की उम्र नहीं होती,
1: जब ध्यान थोड़ी है, जब तो खेलते ही खा कर।
0: हाँ, तो खेलने की बात हम कर रहे हैं कि आपने खेल कौन कौन से खेले?
1: खेल आप का कंची खेल रहे हैं, कहीं रेडी खेल रहे हैं, ये यही खेल खेलते थे।
0: अच्छा,
1: चपट्टा खेल रहे?
0: चपट्टा
1: साउंड का चपेटा खेल।
0: अच्छा,
1: जी खेल रहे।
0: तो साउंड में आप गीत भी गाती हैं? खेल में गीत सुना।

0: हम नहीं जाना तो है नजदीक नहीं था।
1: अच्छा गिवे नहीं आते पहले तो काफी नहीं हो
0: अगर भूल गए तो बड़ा पैर से कुछ नहीं आता
1: इतने बड़ा पन नहीं आपको लेकिन तो बड़ा पन नहीं लगा
0: था आपको
1: तो कौन सा गीत गाते
0: हैं सोलो नहीं गाते
1: आप गाते हैं। अच्छा आपकी सहेली कौन कौन आती
0: हमारी सहेली अब सब बुरे हो गए अब सहेली हमको जाने कहाँ कहाँ गई फिर
1: तो कल को
0: अंगूरी ना तो कल को पुस्ता ना तो ऐसे सबके नाम तो सबके कोई की कल शादी हो गई जी कोई की कल अपने अपने घर से नहीं सो
1: आप मिलती हूँ आप लोग
0: हाँ मिल जाते
1: मिल जाते इकट्ठे हो जाते
0: कभी कभी इकट्ठे हो जाता खुशी तो जब से आप लोग मायके में आप तो सब दोनों मिले तो अच्छे लगते
1: हैं अच्छे लगते हैं। अच्छा अम्मा जो बताओ कि आपके समय में पहनावे कौन कौन सी होती मतलब पैरत का कपड़ा कौन कौन सी चलती
0: कपड़ा पहले तो देखो गरीबी होती सो चड्डी कपड़ा की सिला के पैर रखते और फिर आके पैर रखते और खड़ा कर नहीं मिली तो बिस्को बिस्कोट पहन लेते ये पहन लेते हम तुमने खड़ा कर दे तो ये पहन लेंगे और ये कह रहा हूँ
1: मतलब कोई अलग से नहीं
0: है कोई अलग से नहीं
1: है। अच्छा तो अब हम आपसे बात करें आपकी शादी कितने उम्र में हुई
0: हमारी अब मैं तो ध्यान नहीं है बैठ के तेरे को मार रहा हूँ भाई आते
1: तो मतलब कभी तो अंदाजा हुई है जब आप जाना कभी शादी के बारे में
0: नहीं जान सकते जब हमारी शादी हो गई
1: बिल्कुल नहीं जान सकती। अच्छा जिस आपकी शादी हो रही थी उसको आपने देखा तो
0: है
1: पहले से देखा तो
0: है नहीं नहीं पहले कहाँ देखने देखते पहले ना कोई मोड़ी देखा तो ना कोई घड़ा देखा
1: अच्छा
0: तो से तो आते ही हमारे बाप माता जी ने 8-9 साल के साथ 9 साल के हम आपके पिताजी गुजर गए थे सर 9 साल की शादी कर रही थी तो जिन पे काम कर रखते तो मेरे माता जी ने कल क्या मैं 500 रुपया दे दू मोड़ी को गया करने बोले तो मेरा 10 रुपया मिला तो 500 रुपया ले लो 500 रुपया
1: सही बात
0: फिर लोगों ने 750 रुपया दे मैंने बाई थी।
1: अच्छा
0: नहीं सबसे कछु कछु लोगों ने ऐसे पुण्य आती है देखे उन लोगों ने और दावा दे रहे जैसे ही तो बिट गया तो पुण्य दिया और पुण्य में रह रहे पैसा बड़े बड़े सेठ लोग
1: जब आपकी ब्याह हुआ इसके बाद कितने आपकी ससुराल से नहीं राधापुर में भाई
0: है
1: राधापुर में ससुराल है आपकी तो आपने पहली बार जब कौन कौन सी रस्में आपके भाई हैंगी जैसे पहले बनाते मंडप
0: पहले मंडप तेल लगाओ कर मंडप बहो टीका
1: अच्छा 3 ही दिन को ब्याह तो
0: हाँ 3 दिन आपको
1: तो बड़ा 3 दिन मिली रही थी
0: एक दिन में 3 दिन मिली रही थी बड़ा
1: जयमाला
0: सफेद लट्ठा नहीं जिसे मार्केट से अपन खोल खोल चढ़ा
1: लड़का
0: मड़वा खाला ना चावल
1: अच्छा चावल जी का ढाले जाता आपको कुछ पता होगा
0: नहीं जाता हूँ नहीं पता
1: अच्छा चावल को अच्छा पता ही नहीं
0: मड़वा के खड़ा कर ला हमारी बुआ ने बोले चावल मार दो सब ने
1: खड़ू के बाद
0: बस फिर बाहर चलो गए लड़का फिर पंगत मंगत होने लगी पंगत मंगत भाई फिर चढ़ाऊंगा चढ़ो फिर
1: कहाँ चढ़ा तो आप
0: हाँ पेज में चढ़े थे 1 किलो के वो कम बच जाए
1: 1 किलो की पेज
0: ना हाँ 1 किलो के पेज में कम बच जा
1: बस
0: वही तो कह रहे थे पेज में
1: बाजू बन
0: हाँ दे चढ़े थे
1: अच्छा बैलगाड़ी से झांसी से कैसा लगा दो आपको बेलगाड़ी
0: से बेटा सवाल की होती हम अच्छी कर जाते खेला तक नहीं जाते अब तो कदम नहीं मेरा आदमी
1: अब तो अगर भी जाना है
0: अगर तुम्हें कार से जाना तो गाड़ी
1: से जाना सही बात है। तो फिर जब आप बेटा हूँ इतने आए थे ससुराल में कुकु मिलो आपको
0: ससुराल में सास ससुर जेठानी।
1: अच्छा आपके में नंबर की है थी
0: दूसरे नंबर के
1: नंदन की शादी हुई
0: है।
1: अच्छा शादी के बाद
0: बड़ी हती।
1: बड़ी हती। अच्छा तो फिर आपके एक एक का रस में वही मतलब कंकंचूट
0: हाथे लगे दो तीन चार बना रहे थे फिर चले गए थे।
1: अच्छा खिचड़ी मिचड़ी नहीं बनाई
0: खिचड़ी बनाई थी
1: आपने खुद बनाई थी
0: नहीं बना पाई थी हमने जेठानी में बना रही थी।
1: अच्छा
0: और चमचा से तरवा गई थी
1: नाम होगा तो आप
0: दोबारे में ओलेंडर लगा दे।
1: अच्छा ओलेंडर लगा दे तो जैसे जब आपने खिचड़ी बनाई सबने खाई तो फिर का करने मिलो तो
0: हमें नहीं कछु नहीं मिले तो हमें तो पैसा रखना पड़े थे चूल्हे में
1: वह देने ये तो उल्टा नहीं हुआ
0: पहले देता ही है तेल अभी भी देता हूँ बन के जैसे खिचड़ी बनवा तो चूल्हे लगा बहुत साल बहुत से सास लेते हुए पैसा चाहे दस दर हो चाहे ग्यारह हो चाहे एक सौ बना दे लेकिन वो सास ले और अंडा तो वो इनका रखत में तो बेबी सास ले।
1: अच्छा
0: जी का सास ना हो तो जेठानी में आओ
1: तो जैसे पहले एक अरे एक रसम होती जूड़ा खुलते ही सास तो आपके समय में खुला
0: नहीं हमारे समय जूड़ा नहीं खुला
1: नहीं। अच्छा आपकी
0: छोड़ा खोल जाते
1: छोड़ा भी
0: सास खोल सकती है
1: खोल सकती है
0: खोल सकती
1: सास का महत्व बोलते मतलब
0: जब सास रे में आ जा तो जो छोड़ा खोल सकती सास
1: नहीं तो कुछ महत्व
0: कुछ महत्व जी नहीं।
1: अच्छा आपको नहीं पता
0: छोटे आते छूते
1: फिर आपके काम जब आप दूसरी बार आए अपने ससुराल में फिर कैसे काम कराती जेठानी के संग मिल कर
0: जेठानी के संग करते लड़ाई का
1: कभी लड़ाई नहीं हुई आप
0: नहीं हमारी दी है जेठानी ना सास से भाई कभी नहीं
1: काय नहीं होती आप सीधी हटी के दो जने
0: भी दो ये से आते मिल के कर लेते हो बस सब में कर से आने हो बस सब अलग अलग हो।
1: अच्छा और ये तो सासरे में का काम होती आपकी खेती
0: होती रात से खेती होती।
1: अच्छा
0: पहले मोटर कहाँ होती रात ऐसे खेती होती से रात चला कर रखते।
1: अच्छा और जैसे खेती की आपने बात करी है कि तो आप सुबह से चक्की भी पी सकती है
0: चक्की पी सकते हो सवेरे चार बजे से
1: कितने बजे उठाती हैं आप
0: चार बजे उठ जाते
1: हैं
0: चार बजे से पी सकते से पाँच छह किलो माँच पीस लेते
1: पाँच छह किलो रोज पीसने
0: हाँ रोज इतना जेठानी पी सकती
1: तो भी कभी पी सकती आप जैसे सुबह से उठ के पी सकती
0: हो चार बजे सुबह पी सकती
1: संग में पी सकती
0: है कल सवे कल अलग अलग पी सकते।
1: अच्छा फिर उनके बाद चक्की पीसने के बाद काका काम
0: चौथे बार वो गड्ढा रखते
1: कितनी गाय भैंसे होती आप
0: बोला दस बारह गाय होती।
1: अच्छा
0: सुबह भर में बटा रखते झाड़ा झुंडी कर रखते
1: फिर
0: एक जनी रोटी बनाने लगती एक जनी काम करने लगती।
1: अच्छा ऊपर वो काम कर लेती
0: तो फिर सुबह को आठ बजे तक निकल जाते सुबह चलाते दिन भर।
1: अच्छा वहाँ से वहाँ नहीं आते
0: बेलन से
1: बेलन से चलते
0: घर में नहीं आते लोग
1: सुबह
0: चलाते रखते कभी सात बैठा भी चलाते कभी हम चलाते रहते
1: तो मतलब लड़ाई नहीं होती है। अच्छा आपके कितने मोड़ी मोड़ा है
0: हमारा छह लड़का
1: छह लड़का और लड़की
0: लड़की नहीं है
1: लड़की नहीं है एक तो अपने लड़का को तो पढ़ाओ जो हुए
0: परेशान है कुछ नहीं पढ़ा पाँच पाँच पढ़ा जाइए स्कूल में बस।
1: अच्छा सरकारी स्कूल में तो अब सबकी शादी हो गई
0: हाँ सबकी हो गई सब नाती ना तुम लड़की हो गई।
1: अच्छा नाती इनकी भी कितनी नाती है
0: छह नाते है छह नातने हैं।
1: अच्छा तो बोला आपकी तो मतलब बिलास बड़ा परिवार है।
0: हाँ तो छह लड़का है तो दो दो है सबके।
1: अच्छा
0: और एक के चार है बड़े के तीन मोड़ी है
1: तो
0: आप भी रोगा हो गए तीन मोड़ी के तो मोड़ी मोड़ा हो गए एक के छोटी एक के मोड़ा हो गए एक के मंजिले मोड़ा की के मोड़ी है मोड़ा हो गए
1: तो बहुत बड़ा परिवार है आपको अच्छा लगा थी तीती भान पे हुआ सब जगह आ रहा थी तो अच्छा लगा थी है ना तो आप सुना था नहीं खिलती हूँ कैसा खेल लगती है? अपने
0: सो रहा था सवेरे उठ के सब जगह लीपो पोतो झाड़ो चौको बस पर खेल
1: गाना गाते याद करने आ रही। बहुत बढ़िया आपकी बातें हमें लगी हैं अम्मा। लेकिन एक बात और, आपने पूरी मतलब आंगनबाड़ी की नौकरी कब से कर रही हैं आप?
0: 20 साल से जा रही हूँ।
1: जैसे आपने पढ़ाई 5 तक करी तो आंगनबाड़ी में कैसे आपकी नौकरी लग गई?
0: आंगनबाड़ी में वही लग गई थी।
1: कैसा लग गई थी मतलब?
0: पहले उन्होंने 4 जन्म के कागज दिए थे घर को, तो सबने 200 रुपये में लगते।
1: अच्छा।
0: तो सब जमन ने कही 200 रुपया में का खा रहे हमें निकलने।
1: हाँ।
0: हमें निकलने से कहे मेरी चाची तुम लग जाओ, अभी 200 में रह कभी ज्यादा भी हो सकता।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: है 350 में लगते हैं हमें 200 रुपये।
1: धीरे धीरे करेंगे।
0: तो फिर हम उनके ससुर बोले लादा हम दे दे रू करें तो मैं 2-4 पहली नाच खा भी के गाँव में गज्जा का कर उनके ससुर दे देते 2-4 पहली नाच हम पानी लगे आते हैं तो फिर लगे हुए उनके तो पानी तो अरे भी अभी छोड़ दो हमने पाना तो नहीं लगे।
1: अच्छा।
0: जब से हमने गाड़ी करी जब उनसे पानी
1: भर
0: उनको खाई भी देखी परेशानी से जैसे नहीं आते जो दे तो सकते खा नहीं करते तो कुछ
1: सही बात है
0: ना। कोई भी ना
1: कर मिल जाती मतलब आपको घर चला के लाके मिल जाता आपको?
0: आप 5,000 हो गए ये 2-3 महीना से 2,500 3,500
1: 1,500 आपके पूरे जीवन को अनुभव आ रहा हो मतलब आप अपनी जिंदगी से आपने का सीखो?
0: हम जो खेती किसानी सीखी और जाड़ी कर नहीं कर सकता।
1: आपको का लगा कि पढ़ाई लिखाई अपने जीवन में ज्यादा महत्व दे
0: चाहिए? में तो महत्व जो देखो आप सोच रहे हैं आदमी के जब पढ़ा लिख लेते तो और अच्छे हो जाते, लेकिन पैसे ही नहीं है तो क्या पढ़ा लिख रहे।
1: लेकिन आप सोचती हो ना कि पढ़ाई जरूरी है
0: जैसा पेट को तो रोटी नहीं है पढ़ दे का सोच रहे बताओ।
1: सही बात है। लेकिन सरकारी स्कूल में बहुत सुविधाएं मिल रही है आजकल, फ्री किताबें मिल रही
0: है,
1: पहले नहीं मिला थी लेकिन अब मिल रही तो फ्री के नाम में पढ़ाए चाहिए है ना। बिल्कुल। तो अम्मा और का क्या चाहती हूँ आप अपनी तरफ से?
0: और का
1: मतलब हमारे समुदाय के लाने जो आप सुन रहे हैं इस समय तो उनके लाने का संदेश दे वो चाहती है कि अपनी लड़की को पढ़ाए चाहिए कि नहीं?
0: अपनी जब सब हमारे सब आठ आठ करी ना तो नाती पढ़े
1: तो पढ़ाना चाहिए। हाँ
0: सब पढ़ा रहे कोई लड़ रहा हो कोई बुआ बड़ी बड़ी हो गई सब साथ साथ आठ आठ में करके छोड़ता गया पढ़ गए ना तो धन की
1: बहुत बढ़िया
0: अपना को पढ़ गए अब दो नाती पढ़ रहे थे।
1: चलो बढ़िया अम्मा आपने बहुत अच्छी बातें बताई अपने पूरे जीवन के बारे में बताई के लाने बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

रेडियो अपनी बातें रेडियो बुंदेलखंड 90.45 दोस्तों एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर है आपकी अपनी रेडियो दोस्त वर्षा। और देखो साथी हरो अभी अपन और सुन रहे थे लक्ष्मी जी को जो कि राधापुर की रहने वाली हैंगी। इनसे अपन और ने जाना है वो कि इनके जीवन की का कहानी हती कैसो इनको जीवन रहो है वो और साथ ही में इनने अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में इनको बचपन कैसो बीतो है वो बचपन में जी खेल कौन कौन से खेला था थी जी सब बातें अपन और ने जानी हैंगी। और साथ में इनने बताई हैगी कि 20 साल से जी आंगनबाड़ी में एक कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रही हैंगी। तो देखो पढ़ाई पहले इनने भले ही कम करी लेकिन नौकरी इनकी लग गई जब बहुत अच्छी बात हैगी। कहे कि पहले तनक सी पढ़ाई को भी बहुत बड़ो महत्व हो तो पहले नौकरी जो है

आदमी इनको ढूंढती, लेकिन आज के समय में अपन और देखें तो आदमी नौकरी इनके लाने परेशान हो रहे होते भटक रहेंगे। तो ऐसे अपने कहवे को जो मतलब है वो कि पढ़ाई अपने जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखत हैगी, पढ़ाई को सबसे पहलो महत्व दो। जैसे अपन और सोचन लगा थेंगे कि बिटिया बड़ी हो गई तो बस उकी शादी कर दो, या फिर बड़े हो गए सिर्फ उनको चौका वासन करने आ है वो, घर को काम ही देखने आ है वो। लेकिन जब सोच अपनी जो हैगी वह तनक अपन को बदलने आए, पहले अपनी अपनी मोड़ियन को पढ़ाई जरूर करवावे, ज्यादा नहीं तो आप इंटर तक तो पढ़ाई उनकी जरूरी करवाने हैगी। ताकि आज देखो लक्ष्मी जी सोचती हैगी कि अगर उन्हें तनक और पढ़ाई करी होती तो भी हो सकता है कि कार्यकर्ता की जगह और अच्छी कोनो पोस्ट पे होती और उन्हें अच्छी एक तनख्वाह मिल रही होती, जिसकी वजह से उन्हें अपने परिवार चलावे में कोनो भी दिक्कत ना आती, को सहारा उन्हें नहीं लेने पड़ता। तो देखो आप अपना समय होते हो आज के कार्यक्रम स्त्री एक कहानी से जावे को। लेकिन साथियों जो कार्यक्रम आप सबको कैसो लगो है वो, इनमें आपकी का राय सुझाव हैगी, या फिर आपके भी गाँव में या आपके आस पास कोनो ऐसे लोग हैंगे या फिर ऐसी कोनो स्त्री हैगी जिनकी कहानी रेडियो के माध्यम से आप उन्हें सुनबो चाहतेंगे, तो ई के लाने हमें जरूर बतावे हमारे पते पे पत्र लिख के या फिर फोन के माध्यम से। पते के लाने हमारा पतो है गो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा। तो देखो कितनी अच्छी सुविधा हो गई हैगी, क्या के आज के दौर में अपन देखें तो अपने सब साथी व्हाट्सएप को खूब एकदम से उपयोग कर रहे हैंगे और व्हाट्सएप ही चलाते हैंगे, तो अपन मैसेज भी एक कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप रिकॉर्ड करके भी कछु भी हमें भेज सकते हैं अपने कार्यक्रम के बारे में राय सुझाव। तो देखो आप अपना समय होते हो आज के कार्यक्रम से जावे को, तो अपनी रेडियो दोस्त वर्षा को दे जावे की इजाजत। अपनी फिर हुई मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक आप ऐसे ही सुनते रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 अपना रेडियो अपनी बातें। नमस्कार और चलत चलत सुनो आप ये गीत खो जी खो गा रहे हैंगे दिनेश सोनी।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलिहान में। जैसा कि मित्रों, हमारे किसान साथियों, आपको पता है कि खेत खलिहान कार्यक्रम में हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं। साथ साथ में अभी आपको पता होगा कि मौसम में परिवर्तन हुआ है। कुछ दिन पहले बरसात भी हुई थी, कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हुई थी, जिससे काफी हमारे किसान साथियों को नुकसान हुआ था। और समय समय पर हम विषय विशेषज्ञ के माध्यम से आप लोगों तक वो जानकारी

0: जानकारी पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। अभी हाल में आपको पता होगा कि सब्जियों की फसल में जो कीट व्याधियां का प्रकोप देखने को और सुनने को जो मिल रहा है उससे बचाव किस तरीके से कर सकते, ये एक सवाल आया हुआ था हमारे किसान साथी का, जान बैठा के हमारे विजय जी को पूछा हुआ था और विषय विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सैंसी हाशमी जी हमारे साथ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका।
1: जी नमस्ते किसान भाइयों, आज हम जो है कटिबंधीय फसलों में लगने वाले जो प्रमुख कवकजनक रोग है उन पर चर्चा करेंगे, तो उनके बारे में उनकी पहचान और निवारण के बारे में किसानों को बताएंगे कि वो रोग हम कैसे पहचान सकते हैं और उनसे अपने फसलों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो रबी वर्गीय फसलों में जो प्रमुख रोग लगते हैं उनमें मधु रोमिलासिका, चूमिलासिका तथा उपका या जिसे मिलानी रोग कहते हैं उनके बारे में हम बताएंगे। तो पहले हम एक एक रोग के बारे में चर्चा करेंगे और उस रोग के लक्षण यानी कि उस रोग को कैसे पहचाना जा सकता है और उसका निवारण कैसे किया जा सकता है इस बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कद्दू वर्गीय फसलों में लगने वाले रोग मधु रोमिल आसिता की। तो यह रोग जो है भारत के उत्तरी भागों में यह रोग अधिक देखने को मिलता है और जैसा कि अभी हमने मौसम को देखा ही है कि वर्षा ऋतु हो रही है और फिर धूप निकल रही है, तो इस तरह का जो मौसम होता है इस तरह के मौसम में ही ये रोग जो है वो अधिक देखने को मिलता है क्योंकि वर्षा ऋतु के बाद ही इस रोग के द्वारा नुकसान ज्यादा पहुंचता है और रोग से संक्रमण जो होता है वो इसमें बुआई के एक माह बाद ही हो जाता है और इसके द्वारा जो नुकसान होता है उपज में, उपज जो होती है वो नगण्य हो जाती है और 30-70% तक इसमें नुकसान देखने को मिलता है। और मधु रोमिलासिका का विशेषकर प्रभाव वैसे तो कद्दू वर्गीय फसलों में सभी फसलों पर देखने को मिलता है लेकिन विशेष प्रभाव जो होता है वो खरबूजा और खीरे पर देखने को मिलता है। तो इस रोग के कारण खरबूजे में जो होती है वो मिठास नहीं रह जाती है।
0: मैं एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि इस मौसम चूंकि गर्मी का मौसम चल रहा है और इस गर्मी के मौसम में खास तौर पर अगर सब्जियों की अगर बात करें तो बहुत महंगाई पकड़ी हुई है सब्जियां, क्योंकि बहुत सारे किसान साथियों की इस मौसम में बहुत नुकसान हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से वो अपनी फसलों की तैयारी करें, कौन कौन सी फसलें मतलब सब्जियां वो अपने खेतों में लगाएं, उनकी निगरानी किस तरीके से की जा सके?
1: तो इसमें सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब फसल लगाए किसान तो फसल लगाने के पहले अपनी भूमि को तैयार कर ले। भूमि को तैयार करने का मतलब ये है कि कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनके रोगजनक जो होते हैं वो मृदा में ही पाए जाते हैं या फिर उन फसलों के बीजों में जिन बीजों की बुआई की जाती है तो उन बीजों में पाए जाते हैं। तो यदि हम पहले से मृदा का अध्ययन कर लें और जो हमारे बीज हैं उनको उपचारित कर लें तो इन रोगों से बचा जा सकता है। जैसे गर्मियों में हम लोग गहरी जुताई करके खेतों को छोड़ दें तो उसमें मिट्टी में उपज से जितने भी रोगाणु होंगे वो समाप्त हो जाएंगे और जितने भी खरपतवार हैं या अवांछनीय पेड़ पौधे हैं उनको हटा दें क्योंकि उन पर ही जो है रोगजनक यानी कि उन पर रहते हैं, तो अगर उनको हटा दिया जाए तो उनका जो है वो सोर्स खत्म हो जाएगा, सोर्स यानी स्रोत खत्म हो जाएगा रोग फैलने का। तो इस तरह से किसान भाई बिना लागत के ये छोटी छोटी क्रियाएं करके रोगों से जो है वो अपनी फसल की सुरक्षा कर सकते हैं।
0: बहुत बढ़िया आपने बताई है। एक चीज और जानना चाहेंगे, चूंकि जिन किसान साथियों ने अपनी फसल जो अगर कद्दू वर्गीय की बात करें तो कद्दू वर्गीय की फसल उन्होंने अपने खेतों में लगा दी है, तो कौन कौन से ऐसे मतलब रोग इस मौसम में देखने को और सुनने को मिल रहे हैं और रोकथाम के लिए अगर बात करें तो क्या उनको उपाय करना चाहिए?
1: वो मैं वही इसी शीर्षक पर आ रही हूँ। तो इसमें जो प्रमुख रोग है ये मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कि इसमें प्रमुख रोग मैंने आपको तीन बताई है, मधु रोमिलासिता, चूर्णिलासिता, उकता या ज्ञानी रोग। तो ये आपको एक एक करके मैं इसके लक्षण, इनसे होने वाले नुकसान और साथ ही साथ इनके जो निवारण है वो बताती चलती हूँ। तो सबसे पहला जो रोग है मधु रोमिलासिका जो कद्दू वर्गीय फसलों में देखने को मिलता है, तो इसके अगर लक्षणों की बात करें हम तो इसकी पत्तियों की ऊपरी सतह जो होती है उस पर छोटे छोटे हल्के हरे और पीले धब्बे बनते हैं जो कि जल्दी ही

0: भूरे रंग के हो जाते हैं और इनकी शिराओं तक ही सीमित रहते हैं। जो शिराएं होती हैं वहाँ शिराओं पर ये धब्बे नहीं पड़ते हैं, तो वहां से ये थोड़े से मुड़ जाते हैं, तो ये धब्बे जो है वहाँ जिस जगह शिरा पाई जाती है वहां पे कोणीय हो जाते हैं थोड़े से। और इन धब्बों के ठीक नीचे यदि हम देखते हैं तो कवक का जो है वो जाली नुमा बैगनी या नीले रंग का जो होती है वो वृद्धि दिखाई देती है। और संक्रमित पत्तियां जो होती हैं फिर जल्दी भूरी होकर सिकुड़ जाती हैं और उनका जो संरचना होती है वो विकृत हो जाती है। विकृत होकर ये पत्तियां जो होती है पौधे से गिर जाती है। अगर संक्रमण उग्र रूप में होता है तो फल छोटे होते हैं, संख्या में कम बनते हैं तथा विरूपित हो जाते हैं, यानी कि उनकी संरचना जो होती है वो परिवर्तित हो जाती है। तो इस रोग की रोकथाम के लिए जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, सर्वप्रथम तो खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए और आगे की बुआई करना चाहिए। खेत की बुआई करने से पहले खेत की अच्छी तरह से सफाई कर देना चाहिए, यानी कि कोई भी खरपतवार या अवांछनीय पौधे उसमें नहीं होना चाहिए। और अगर ये समस्या बार बार आ रही है और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है तो हमें कम से कम 3 साल का फसल चक्र अपनाना चाहिए, यानी कि कद्दू वगैरह फसलों को 3 वर्ष तक नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, ये तो हमारे जितने भी निवारण हो गए ये बिना किसी खर्च के हो गए, और अगर हम बात करें रसायनों के द्वारा, अब भाई रोग आ ही गया है और फसल खड़ी है तो फिर उसको जो है नियंत्रित करना जरूरी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मैनकोवेट 0.25% और इसे क्या करते हैं 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के इसका छिड़काव करते हैं। तो अगर वो गंभीर अवस्था में, बहुत ज्यादा गंभीर अवस्था में हो, तो मेटालैक्सिल और मैनकोवेट इसका जो है इसका कॉम्बिनेशन ले लेते हैं और इसका इसकी मात्रा जो होती है 2.5 ग्राम मेटालैक्सिल और मैनकोवेट को 1 लीटर पानी के साथ मिलाकर और इसका छिड़काव करने से इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है।
1: जी मैम, यही मैम, अगर शुरुआत की अगर बात करें मैम, तो शुरुआत में हम जब अपने पौधे की रोपण करते हैं या अपने सब्जियों को लगाते हैं, उस समय जब हम बीज उपचार की बात करते हैं, तो किस तरीके से हमारे किसान साथियों को, और खास तौर पर अगर महिलाओं की मैम बात करें, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि खेतों में कंधे से कंधे मिलाकर महिलाएं खेतों में काम करती हैं, तो उनको सबसे ज्यादा ये सलाह बहुत जरूरी है कि किस तरीके से वो अपने खेतों में जब सब्जियां लगाए तो बीज उपचार किस तरीके से करना चाहिए।
0: बीज उपचार देखिए, आजकल सब मतलब हर जगह यही बात बार बार बोली जा रही है कि हम कम से कम रसायनों का उपयोग करें, तो उसके लिए सबसे अच्छा हमारे लिए एक विकल्प ये है कि हम ट्राइकोडर्मा जो है और जो आपके मेडिसिनल प्लांट हैं इनसे बनने वाले जो इनके जूस हैं, इनको जूस को निकाल के और उससे बीज उपचारित करें, तो वो इफेक्टिव भी होते हैं, कम को उनकी लागत भी कम होती है और इससे किसी भी रोग को रोका भी जा सकता है।
1: शुरुआत से ही हमें मतलब इसका ध्यान रखना चाहिए। और अगर मैम पानी की बात करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सब्जियां रहती हैं जिनको अधिकतर पानी की आवश्यकता पड़ती है, और पानी की अगर बात करें तो पानी की किल्लत अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में बनी ही रहती है, तो ऐसे क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कौन सी सब्जियां इसमें लगाया जाए जिसमें कम पानी से उत्पादन उनका अच्छा हो।
2: साथियों, इस सवाल का जवाब सुनने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा विराम लेते हैं और मनोरंजन करते हैं एक अच्छे से गीत के साथ। इसके बाद इस सवाल का हम जवाब हमारी जो विषय विशेषज्ञ है मैडम, उनसे हम लेंगे। तो आइए सुनते हैं यहाँ पर इस प्यारे से गीत को।

0: जहाँ तक खाने की बात है तो देखिए, इसमें जो ये वाली सब्जियां हैं कद्दू वर्गीय फसलों में, आपका तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, इनको पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो
1: जी भाई,
0: इनकी कृपा हम अप्रिशिएट करें कि हम जो है वो लौकी, कद्दू, तुरई इस तरह की और करेला इस तरह की सब्जियों को लगाएं, शेप
1: बिल्कुल भाई,
0: करें।
1: जी मैम। और दूसरी अगर बात करें मैम, टमाटर अगर देखा जाए तो यहाँ पर टमाटर का उत्पादन ठीक ठाक होता था, लेकिन कुछ
0: जी
1: दिनों से हम ये देख रहे हैं कि टमाटर का उत्पादन अपने क्षेत्र में कम पैदावार होता है। तो क्या कारण हो रहा है कि ये सब्जियों में गिरावट देखने को मिल रही है?
0: जैसा कि हम लोगों ने, हमारे यहाँ भी यूनिवर्सिटी का एक फार्म है तो वहां पे बच्चे टमाटर लगाते हैं, तो मैंने ये प्रायोगिक रूप से देखा है। तो वहाँ शुरुआती जब टमाटर शुरुआत में आता है, मतलब आरंभिक अवस्था होती है, तो उसमें एक रोग लगता है, वो है अगेती झुलसा रोग। और उसके बाद जब टमाटर जो है वो तैयार हो जाता है तो उसमें पछेती झुलसा रोग आ जाता है। तो ये दोनों रोग जो होते हैं वो टमाटर की क्वालिटी को तो खराब करते हैं, साथ ही साथ उनकी जो उपज है उसको भी कम कर देते हैं। तो इन दोनों रोगों पर अगर नियंत्रण करने की किसान कोशिश करे तो हमारे ख्याल से उपज को बढ़ाया जा सकता है।
1: तो मतलब शुरुआत से ही हमें ध्यान में रखना
0: जी
1: चाहिए इस
0: जी
1: बात
0: शुरुआत
1: को।
0: से, किसान को शुरुआत से अगर ध्यान देगा
1: जी
0: तो उसकी रोग को नियंत्रित करने में लागत भी कम लगेगी, और साथ ही साथ जब वो हर बार ये क्रियाएं करेगा तो उस रोग की तीव्रता को भी कम किया जा सकता है। और इसका एक बेस्ट ऑल्टरनेट ये है, मतलब विकल्प ये है कि किसान जो है रेजिस्टेंस वैरायटी लगाए, और रेजिस्टेंस वैरायटी लगाने के साथ साथ हमेशा हर सीजन में ना एक ही रेजिस्टेंस वैरायटी नहीं लगाए, वैरायटी को बदल बदल के लगाए। क्योंकि क्या होता है, जो रोगजनक होता है, जैसे आपने देखा होगा मनुष्यों में जो रोग होते हैं, तो जब वो रोग जो है लगातार आते रहते हैं तो वो प्रबल हो जाते हैं, तो डॉक्टर की जो होता है वो दवा को जो है वो परिवर्तित कर देता है, चेंज कर
1: बिल्कुल
0: देता है। तो इसी
1: बिल्कुल
0: तरह से अगर हम रेजिस्टेंस वैरायटी को बदल बदल के लगाएंगे तो जो रोगजनक है, जो उसकी रेजिस्टेंस को जो होता है वो तोड़ देता है, वो तोड़ नहीं पाता है, वो अपने आप को उसके अनुकूल ढाल लेता है ना। जब लगातार एक ही रोगजनक जो होता है उस भूमि में पाया जाता है, वही रोगजनक और वही रोग आ रहा है, तो और आप वही जो है वो रेजिस्टेंस वैरायटी लगा रहे हो, तो उसकी जो होती है रेजिस्टेंस को वो तोड़ देता है। तो इसलिए अगर आप उसको बदल बदल भी लगाएंगे ना तो रोगजनक जो है वो प्रभावी नहीं रहेगा
1: मैम,
0: उतना।
1: इसका ये कारण मतलब हम तो उस चीज में मतलब जानते नहीं हैं, आप एक्सपर्ट
0: जी,
1: हैं। जैसे कि हम लोग मिट्टी की अगर चर्चा करें कि मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही है, तो इसका प्रभाव क्या सब्जियों पर पड़ रहा है मैम?
0: जी बिल्कुल पड़ रहा है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि किसान जो है वो बिना सोचे समझे जो है वो रसायनों का प्रयोग कर रहा है। ये
1: जी
0: रसायन अगर किसी एक खेत में लगातार रसायन का उपयोग किया जाए तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति तो छोड़ दीजिए, वो मिट्टी भी बंजर हो जाएगी। तो
1: बिल्कुल
0: इसलिए हम लोग बार बार अप्रिशिएट करते हैं किसानों को कि आप जो है वो रसायन का उपयोग ना करें, इसकी जगह से जो विकल्प हैं उनकी तरफ जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा,
1: जी,
0: जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ी रहेगी। और जब खेत बैरन पड़े रहते हैं ना, यानी कि खाली पड़े रहते हैं, तो उस समय जो है अगर ढींचा लगवा दिया जाए खेत
1: जी
0: में तो
1: जी
0: उसकी उर्वरा शक्ति जो है वो उसको रिकवर कर लेगी मिट्टी।
1: मैम एक चीज और

0: आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए बुंदेलखंड क्षेत्र में बरुआ सागर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर खरबूज और तरबूज की पैदावार बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन आज देखा जाए तो ये 100 में से 10% ही बचा है कि खरबूज और तरबूज लोग उगाते हैं। तो क्या कारण हुआ कि विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है ये सब्जियां? मतलब ये
1: अब ये बरुआ सागर का जो टेक्सचर है, मिट्टी का नमूना है, एक तो इसकी जांच करवानी पड़ेगी कि भाई मिट्टी में क्या उत्पादकता में फर्टिलिटी में कमी आई है
0: जी।
1: दूसरी चीज ये है वहाँ रोग कुछ ऐसे रोग होंगे जो हर साल कोई रोग अगर कम मात्रा में आता है और किसान ध्यान नहीं देता है तो अगले साल उससे दुगनी मात्रा में आता है, फिर उसके अगले साल उससे ज्यादा मात्रा में आता है, तो हो सकता है वहां जो रोग आ रहा हो वो प्रबल हो गया हो जो उसकी पैदावार को कम कर रहा है।
0: जी
1: और एक नो डाउट अब हमारे यहाँ पानी की कमी तो है ही, क्योंकि खरबूज खरबूज ये वाली फसलों को पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है और अगर पानी की कमी है तो फिर किसान उन फसलों को लगाना भी छोड़ देता है, कम कर देता है या लगाना छोड़ देता है, तो ये सारे कारण हो सकते हैं सबके।
0: जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। लेकिन हम आपसे एक छोटा सा एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में कल एक सवाल आया हुआ था। मतलब ये हम जब लाइव कार्यक्रम कर रहे थे तो उस समय एक हमारे श्रोता साथी ने एक सवाल पूछ लिया था, वो सवाल हमारे मन में कल से ही गूंज रहा था, तो हमने सोचा कि आपसे मतलब पूछा जाए वो सवाल को। सवाल ये था कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मतलब जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, खास तौर पर देखा जाए तो महिलाओं का पर इनका ज्यादा असर देखने को और सुनने को मिलता है। अगर हम बाल विवाह की इसमें बात करें तो जलवायु परिवर्तन और बाल विवाह इसको अगर जोड़ा जाए, देखा जाए, क्योंकि एक दूसरे से ये मतलब जुड़े रहते हैं, आपका क्या मानना है कि क्या कारण है कि आजकल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, खासतौर पर महिलाओं की और खासतौर पर जो बाल विवाह देखने को और सुनने को मिलता है, उसके बारे में मैम आपका क्या ख्याल है? मैम
1: देखिए, जलवायु परिवर्तन की अगर हम लोग बात करें तो उसके लिए जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हम लोग खुद हैं, स्वयं हैं, क्योंकि हम लोगों ने ना पर्यावरण को सुरक्षित करने के तो उपाय नहीं किए हैं लेकिन उसको बिगाड़ने की सारी कसर कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। हम हर वो काम करते हैं जिससे हमारा पर्यावरण जो होता है वो प्रदूषित होता है,
0: जी मैम,
1: तो इसके लिए तो रिस्पॉन्सिबल हम लोग हैं। और जहां तक बाल विवाह और जलवायु परिवर्तन की बात है तो उसमें ये जो है ना कि अब मैच्योरिटी लड़कियों में जल्दी हो जाती है
0: जी मैम,
1: क्योंकि हम लोग जो है हमारा खान पान ऐसा है
0: जी मैम,
1: कि हमारे यहाँ जो है लड़कियों में मैच्योरिटी जल्दी हो जाती है। दूसरे हमारे हम जिस परिवेश में रह रहे हैं या जहाँ माहौल जिस माहौल में रह रहे हैं वहाँ शिक्षा की कमी है, क्योंकि जहाँ शिक्षा की कमी है वहीं बाल विवाह होते हैं।
0: बिल्कुल मैम,
1: और जहाँ शिक्षित हैं लोग वो इस चीज को समझते हैं कि बाल विवाह जो है वो एक कुप्रथा है एक तरह से हमारे यहाँ, और इस कुप्रथा को भी फॉलो नहीं करना चाहिए।
0: जी मैम,
1: तो लोग जो है वो अगर लोग शिक्षित हो जाए और हमारे पर्यावरण के प्रति सजग हो जाए
0: जी मैम,
1: तो पर्यावरण भी सुधर जाएगा और साथ ही साथ ये बाल विवाह भी जो है वो भी
0: कहीं ना कहीं
1: जो है
0: भी
1: एक जी विकल्प यही है कि शिक्षा।
0: जी बिल्कुल, आपने सही बात कही है कि शिक्षा एक ऐसा विकल्प है जिसको हमें समझना चाहिए और सोचना चाहिए। समस्या यहाँ पर मैम ये आती है,
1: जी जी जी, अब आप जब आप शिक्षित होंगे तभी आप पर्यावरण को भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: पर्यावरण को हमें अपने कैसे बचाना है, क्या क्या हम काम करें, हम वाटर सेविंग करें और हम ऐसे जो फैक्ट्रीज वगैरह है वो अपने दूर ले जाकर बस्सी से लगाएं और जंगलों को ना काटें, जंगलों को ज्यादा से ज्यादा लगाएं, तो उसी इन सब चीजों से हमारा पर्यावरण जो है सुरक्षित हो सकता है।
0: कहीं ना कहीं मैम ये भी तो हो सकता है, मतलब ये चूंकि हम तो एक्सपर्ट है नहीं, आप उसको वाली बात ही जानती हैं, कहीं ना कहीं मैम जब हमने लोगों से बात की है तो उन्होंने ये बताया कि जो जलवायु परिवर्तन हुआ है, मौसम चक्र बदला है, कहीं कहीं बर्बादी मतलब जाना किसानों की नुकसान हुआ है, जिस कारण से वो लोग क्या करते हैं, पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और जब पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम

0: बच्चियों को वहां पर कहां ले जाएंगे, तो वो मजबूर हो जाते हैं कहीं ना कहीं बाल विवाह करने के लिए। तो आपका क्या मानना है मैम इस विषय को लेकर?
1: जी ये बात तो सही है कि मुझे याद है ये 2005-07 की बात है कि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में ना 2005 से लेकर 7 तक बिल्कुल बारिश नहीं हुई थी, तो किसान की पूरी खेती जो है वो बहुत ही कम हो गई थी या ना के बराबर हो गई थी। उस समय बहुत सारे किसानों ने, मजदूरों ने जो है वो पलायन कर दिया था दिल्ली की तरफ।
0: जी मैम,
1: दिल्ली की तरफ ही आसपास के जो बड़े क्षेत्र है वहाँ मजदूरी करने के लिए पलायन कर लिया था।
0: जी मैम,
1: तो अब उसमें समस्या ये उत्पन्न होती है कि दूसरे शहर में अगर पलायन करने जाता है बंदा तो वो कमाने के लिए जाता है
0: जी।
1: अब वो कमाने के लिए वहां जाएगा तो बड़े शहर का खर्चा भी ज्यादा होता है, तो वो सोचता है कि भाई हम अपनी जिम्मेदारी जो लड़की या शादी करना है वो शादी करके और एक जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे, फिर यहाँ का खर्चा भी खत्म हो जाएगा और हम पाऊंगा जो कमाएंगे वो परिवार को दे जाएंगे। तो लेकिन ये है कि अगर हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित कर लेते हैं
0: जी मैम,
1: तो जलवायु में भी चेंज आएगा। आप देखिए जिस टाइम कोरोना था तो कोई व्हीकल नहीं चल रहे थे,
0: जी मैम,
1: कोई भी किसी तरह का आवागमन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से जो वाहनों की वजह से जो पर्यावरण हमारा संदूषित हो रहा था वो एकदम साफ हो गया था,
0: बिल्कुल मैम, जी मैम,
1: बिल्कुल साफ हो गया था। तो उस समय जो है वो मतलब हवा भी बहुत अच्छी लगती थी, हालांकि हवा खूब मिला नहीं जा रहा था लेकिन हवा जो है वो बहुत जो प्रदूषित थी वो भी साफ हो गई थी। दिल्ली में भी जितना प्रदूषण था वो भी सब खत्म हो गया था। तो यही एक रीजन है कि लोग जो है वो जलवायु परिवर्तन की वजह से जो उन पर जो प्रभाव पड़ता है उसकी वजह से वो पलायन कर जाते हैं क्योंकि उनका खेती वगैरह सब खत्म हो जाता है।
0: जी मैम, इसका मैम बस लास्ट इसका सवाल रहेगा हमारा कि इसका समाधान मैम क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है इसका रोकने के लिए? इसको
1: रोकने के लिए जैसे शहरी लोग हैं तो शहरी लोग अलग अलग वाहनों से सफर करते हैं, तो बड़े शहरों में तो आजकल ये चल ही रहा है कि आपने सुना होगा कार पूल करते हैं, तो लोग जैसे जिनको एक जगह जाना है वो एक ही वाहन से जाए, दो चार लोग एक ही वाहन से जाए, पानी को कम वेस्ट करें, जल संरक्षण करें और ऐसे उपाय अपनाएं जिससे हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके, उसे हम बिल्ड अप करें ना कि उसे और बर्बाद करें।
0: मैम आपने समय दिया है इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं आपका, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहते हैं कि मैम आपने इतने कम समय में बहुत सारी जानकारी हमारे श्रोता साथियों के जो मन में सवाल चल रहे थे उसका मैम आपने समाधान किया है। इसके लिए मैम आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहेंगे।
1: धन्यवाद,
0: थैंक यू मैम,
1: उन्होंने मुझे सुना और उम्मीद है कि वो मेरी बातों को जो है वो अपनाएंगे भी जिससे वो फायदा उठा सके अपना कर। जी धन्यवाद,
0: थैंक यू। साथियों इसी के साथ हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेत कल्याण कार्यक्रम से जाने का। तो कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पर, नंबर है हमारा 92-19-20-77-49। इस नंबर पर आप कॉल करके अपने विचारों को रख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4, अपना रेडियो अपनी बात है।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप इबीरा अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जनन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। और साथियों, विधा बुंदेली कार्यक्रम में आज सुने अपन विधा कछियाई गीतन को और इनको आनंद लें। सो दोस्तों, आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड।

एक डार पे तीन डरे झूला और चीनो सखी अपने दूल्हा। देखो दोस्तों, अपन सब जन ने जो भजन सुनो है, ई भजन में अपन ने सुनो है भोले राम कुशवा जी के गाय भाई भजन को। अब आओ सुनते हैं फिर से इनके गाय भाई भजन को। सो आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4।

जाबज नार सतावे के मैया मुए जाबज नार सतावे। अब आओ आगे सुनते हैं कि जीवन नैया भूला नाथ हमारे। देखो कितना प्यारा भजन अपन अब आगे सुन देखो जा रहे हैं। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।